0: agenda.
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI रेडियो ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

सौ मील का भ्रमण है ईसाइयत सारी दुनिया च। नौ खंड पृथ्वी का भ्रमण गुरु नानक का। मैं तो सुन के हैरान होया होंगकोंग दे चाइना दे जिहड़ा शहर है नानकिंग नानकिंग कहिंदे ने गुरु नानक दे नाम ते बौद्ध भिक्षुआं ने रखिया सी। बौद्ध मंदिर दे सतगुरु ठहरे बौद्ध भिक्षुआं नूं उपदेश कीता उन्हां नूं उस पिंड दा नां रखिया नानकिंग। शंघाई दे बहुत वड्डा गुरुद्वारा भी सी। कम्युनिज्म दे आंदियां सिख उत्थों निकल आए होंगकोंग दे जाके वसे। बर्मा गए सतगुरु, सिक्किम गए, भूटान गए, तिब्बत गए, लेह लद्दाख गए, फिर सारा रशिया रशिया दे चक्र चिन्ह मिले ने, निशान मिले ने, सारा अफगानिस्तान, ईरान, फिर सारा अरब, लंका, इतना सारा भरम भरमण और इतना सच का उपदेश दिता संसार नो सानू कहने ते दो करोड़ भी नहीं ने। चलो इस संबंध च मैं एक निकी जी गल थानू सरवण करा दें। यूरोप दे देशां दी सियाहत करके भ्रमण करके जब डॉक्टर मोहम्मद इकबाल वापस गया ना अपने देश उदों देश की वंड नहीं हुई सी। लाहौर विच पहुंचिया ते उहदे स्वागत विच बहुत वड्डा जलसा रखिया गया। चूंकि हुण चोटी दा विद्वान सी तीन कवि किसी हद तक संत कवि ने, पंजाबी दे संत कवि भाई साहब भाई वीर सिंह जी, बंगाली ते संस्कृत दे संत कवि रविंद्र नाथ टैगोर, उर्दू फारसी दे फकीर शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। शायद आपनो पता होवे गुरु नानक दे बारे डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने बड़ी कीमती नजम लिखी सी। शमा हक से जो मुनव्वर हो वो ये महफिल न थी, बारिशे रहमत हुई पर जमी काबिल न थी। ऐ गुरु नानक तू कदम कदम दते सच दा दीवा जलाया पर महफिल ते अंधिया दी सी, किसी ने अखा ही नहीं खोलिया। तू कदम कदम दते रहमत दी बारिश की थी पर जमी काबिल न थी, जमीन ते बंजर सी। मेहनत तू गुरु नानक बहुत की थी, उस मेहनत का फल असी नहीं देखते। इकबाल इंज कहना। लाहौर दे जद वापस आया तो लाहौर दे पतवंतियां ने शायरां ने आलम फाजलां ने उहदे स्वागत समारोह दे च बहुत वड्डा जलसा रखिया। इहदे च अच्छे अच्छे साहित्यकार कवि दार्शनिक फिलोसफर इकट्ठे होए। कुछ कवियां ने अपने कलाम सुनाए, कुछ शायरां ने अपने कलाम सुनाए, ते फिर उन्हां सारियां ने इकबाल नूं कहा तुसी कुछ सुनाओ। लेकिन भरे जलसे दे चों इकट्ठ दे चों मंग आई, तुसी जिहड़ा यूरोप का भ्रमण करके आए हो सारे यूरोप का, असी होर कुछ नहीं सुनना चाहते, तुसी ये दसो हिंदुस्तान का धर्म ते यूरोप का धर्म इदी मुशाबत करो, तुलनात्मक गल करो, कंपेयर करके दसो किथे महानता है, तुलनात्मक गल करो। बड़े ध्यान नाल सुनना, कीती है तुलना, इसने कीती है तुलना, सुनाया है। कहिंदा है बहुत देखे हैं मैंने मशरिक और मगरिब के मैखाने, यहां साकी नहीं मिलता वहां बेजौक है सावा। वो धर्म नो शराब नाल तशबीह देंदा है। दूर क्यों जाओ, नाम भी एक नशा है पर होश दा नशा है, शराब भी एक नशा है बेहोशी दा नशा है। शराब पी के ते मनुख अपना नाम भी भुल जांदा है, पर नाम दे नशे दे किन लोकां दा ज्ञान हो जांदा है। सरूर है एक मस्ती, ये भी एक अलग प्रकरण है। ये शराब बनाने का ढंग भी गुरु ग्रंथ साहब जी दसते हैं। गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ भाव बाटी तन धारा, सुख मन नारी सहज समानी पीवे पीवन हारा, औधो मेरा मन मत वारा उन मन चढ़ा मदन रस चाकया, त्रिभुवन भया उजारा,
7-8 शब्द ने

ये तीर दे लगन नाल मैं इनो भी बयान नहीं कर सकता, गूंगा हो गया। पर जितना रस आ रहा है इस रस नू भी मैं बयान नहीं कर सकता, गूंगा हो गया। इको ही पीड़ा है, भगत चाहते ने बनी रहे बनी रहे, बाकी हर पीड़ तो मनुख छुटकारा चाहता है। जरूर थोड़े विचों जड़े कोई अभ्यासी होंगे ते शब्द चोट कर गया होगा, उदा एक अनुभव होंदा है परमात्मा तो नहीं मिलता ते ना सही, अपनी प्यास बनी रहन दे, अपनी तड़प बनी रहन दे, उदी ए उमंग पैदा हो जाती है, उदी ए तड़प आती है। इन एक सूफी अमीर खुसरो इंज बयान करता है, या रब दुआए वसल ना हर गिस कबूल हो, फिर दिल में क्या रहेगा जो हसरत निकल गई। हे प्रभु हे खुदा, हर वक्त मैनू तड़पण दे, दुआ करन दे, तेरे अगो मैं फरियाद करदा रवा, नहीं मिलदा ना मिल, कम से कम मैनू फरियाद करन दे। इस फरियाद दे च भी रस है, इस फरियाद दे च ही आनंद है। जद कदी कोई गहराई नाल अरदास करदा है, प्रार्थना करदा है, यकीन जानो उसे च भी आनंद है, उसे च भी रस है। इको एक पीड़ा है जेदे च महा रस है, कबीर केंद्र मैं गूंगा हो गया नहीं बयान कर सकता। गूंगा हुआ बावरा, बावरे तो मुराद पागल इत्थे नहीं है, बावरे तो मुराद भोला, भोला हो गया। भोला मनुख अंदरों बाहरों एक होंदा है, ये मैं अर्ज कर दें। चलाक मनुख बाहरों कुछ होर होंदा है, अंदरों कुछ होर होंदा है, जिन्हों बाबा फरीद इंज कहिंदे ने, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। औरंगजेब भी दो वक्त कुरान की तलावत करता है, पांच वक्त नमाज पढ़ता है, जुमा रात नू जकात देंदा है, रमजान दे महीने च रोजे रखता है। पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने, तोरा मन नादानम के यजदा शनास, श्री मुखवाक पातशाही दसवें, तू खुदा शनास नहीं है, पखंडी है, झूठा है, फरेबी है, तेरा नमाज पढ़ना भी झूठ, तेरी कुरान दी तलावत भी झूठ, तेरे रमजान दे महीने च रखे रोजे भी झूठ। तू रामन नदानम के यजदा शनास, बरा मज्जा तो का रहा दिल खराश, तू ओ कम कीते ने जेदे नाल लोगां दे दिलां नू खराश पहुंची है, तू लोगां दे दिलां नू चोट पहुंचाई है। रब नाल जुड़िया होया मनुख लोगां दे दिलां नू जोड़दा हुंदा है, तोड़दा नहीं हुंदा, तू ते कदम कदम दे ते दिल तोड़े रहे, तू पखंडी है, तू झूठा है, चलाक है, बाहरों कुछ होर पेश करदा है अपने आप नू, अंदरों कुछ होर। हमू मर्द बायद शबद सुखनवर, न शिकमे दिगर दरदा हाने दिगर। असी उसनु ही मर्द मनदे हां, मनुख मनदे हां, जो जबान दे चे ओही दिल दे चे, जो दिल दे चे ओही जबान दे चे। तेरी जबान ते कुछ होर है, तेरे दिल दे च कुछ होर है। जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे है, ये कच्चे है। चलाक मनुख बारों कुछ होर आंदा है, अंदरों कुछ होर आंदा है। हुण मैं अर्ज करा, चलाक मनुख हो सकदा है संसार विच बड़ी सफलता प्राप्त कर लवे, लेकिन धर्म दी दुनिया च पछड़ जाएगा। भोला मनुख धर्म दी दुनिया च बहुत अगे लंघ जाएगा, हो सकदा है संसार विच पछड़ जाए, ये भी मैं अर्ज कर दें। भगत कबीर कहिंदे ने, चतराई ना चतर भुज पाई, चतराइया नाल नहीं मिलना, चलाकिया नाल नहीं मिलना, चतराई ना चतर भुज पाईए, रे जन मन माधो सों लाइए, कहत कबीर भगत कर पाया, भोले भाए मिले रगर, उते भोले भा नाल मिलना। बावरा ओला, कबीर कहिंदे ने ऐसा शब्द दा तीर लगे है, ओला हो गया, अंदरों बारों एक हो गया। ईरानी सूफी संत हाफिज कहिंदा है, सद जां फिदाए आ के जबानश दिलश यकेस्त, हजारां जिंदड़ियां उस मनुख तो कुर्बान कीतियां जा सकदियां सदके की।

बरजमे रफ्तन चे दुशवार अशबग जिदी सोचनी इतनी उच्ची हो गई है, आसमानों नू छूंदी है, जमीन दियां समस्यावां उहदे पैर नहीं रोक सकदियां, संसार दियां उलझना उसनू नहीं रोक सकदियां। इतनी वड्डी गल वो करदा है। और ऐसे विद्वान पुरुषां दी संगत विच रहिंदा सी बहादुर शाह जफर। इबादत करदा सी, नाम जपदा सी, तस्वीर फेरदा सी। तो जिहड़ा बंदा इतना कुछ करे ते समझदार भी होवे तो कुदरती गल अपने नेड़े आएगा। और अपने नेड़े कौन आउंदा है? जो सब तो निराश हो जांदा है, उदास हो जांदा है। बहादुर शाह दी एक नजम जो जगत प्रसिद्ध होई विद्वाना दी दुनिया च, शायरां दी संगत करदियां करदियां, विद्वाना दी संगत करदियां करदियां खुद विद्वान हो गया सी और खुद बुलंद पाया शायर हो गया। कहिंदा है, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, मेरा दिल नहीं लगता, ये संसार एक उजाड़ है और कुछ भी नहीं। मैं उस दिन अर्ज की सी गुरु अर्जन देव जी महाराज की कहते ने, महाभयान उद्यान नगर करवानिया। कहिंदा है बहुत वड्डा शहर है, महाराज कहते बहुत वड्डी उजाड़ है, कुछ भी नहीं है। मनुख मनुख नाल टुटिया होया, मनुख का मनुख नाल संबंध नहीं, भरा का भरा नाल संबंध नहीं, पति पत्नी दे विच दराड़ां पईयां होईयां ने, बच्चियां ते मां बाप दे दराड़ां पईयां होईयां ने, पड़ोसी का पड़ोसी नाल कोई मिलना नहीं, मनुख ते मनुख नाल टुटिया होया, केड़ी गल दा शहर है? उजाड़ है, बिल्कुल उजाड़ है। महाभयान उद्यान नगर कर मानिया, झूठ समग्री पेक सच कर जाने। जफर कहिंदा है, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, इस उजाड़ विच मेरा दिल नहीं लगता। उजाड़ किसनों कह रहे हैं? सारे संसार नू। किसकी बनी है आल में ना पाएदार में, इस कच्ची जमीन विच पक्की जिंदगी किसनों मिली है? इस नासवंत संसार दे च सदीवी सुख कदीमी सुख किसनों मिले है? कायम दायम किसनी दुनिया होई है? किसकी बनी है आल में ना पाएदार में। अगां चल के कहिंदा है, उम्रे दराज मांग कर लाए थे चार दिन। कहिंदा खुदा तो मैं बड़ी लंबी उम्र लेके आया, किन्नी? चार दिन। उम्रे दराज मांग कर लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गई दो इंतजार में। कहिंदा दो दिन लंघे इच्छावां कर दे कामनावां कर दे, ते दो दिन लंघ गए उड़ीक कर दे, इच्छा अज पूरी होवेगी कल पूरी होवेगी, अज पूरी होवेगी कल पूरी होवेगी, की पूरी होनी सी असी खत्म हो गए। ध्यान नाल सुनना, सारियां इच्छावां किसे दियां नहीं पूरियां होंदियां, इस चक्कर च ना पैना। इसे वास्ते कह दिता है, आसा मनसा सगल ते आगे। एक इच्छा पूरी हो जाए, मैं दोहरा दें, कम से कम दस इच्छावां नूं जन्म दे जांदी है। वो दस इच्छावां पूरियां होवन सौ इच्छावां नूं जन्म दे जांदी है, वो सौ इच्छावां पूरियां होवन हजार इच्छावां नूं जन्म दे जांदियां ने, वो हजार इच्छावां पूरियां होवन इन्नी जिंदगी नहीं है। मनुख ख्वाहिशां दे बोझ दे थले ही मरदा है। उम्रे दराज मांग कर लाए थे चार दिन, दो आरज़ू में कट गई दो इंतजार में, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें। नाम अव्यासी दे सामने सब तो जड़ी अड़चन आंदी है इच्छावां दी। मनुख कहिंदा है, ए निकलन निकलन, मैं वैराग शतक

0: शाबाश।
1: कोट अपराधी तरिया रे, गुरु नानक जिन सुने आपे खिया, से फिर गरबास ना परिया रे।
2: हर तरह का स्रोता लाइव सुन रहे, हर तरह का स्रोता इथे बैठा, प्रेम वाला भी दूजा भी। जदों आ बाणी दे प्रमाण बच्चे देंदे वीर देंदे ने, ते अंदरों सवालां दी गुंजाइश खत्म हो जांदी है वी गुरु नानक दी बाणी कह रही है, गुरु नानक जिन सुनिया देखिया, ओ सुनिया देखिया, बोलो सुनिया
3: देखिया,
2: से फिर गरबास ना भरिया रे। गज के आखो सतना,
4: जिनको कृपा करी जग जीवन।
2: ये प्रमाण बाणी जो काम दे, धारना भारू ना रवे, भारू बाणी रवे।
4: जिनको कृपा करी जग जीवन, हर ओर धारे हो।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नूं दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तों दुख नहीं निकलदा, किसे नूं मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इन्हां सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तां मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वाह लगी, ना जमा दी तत्ती वाह लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: ज्ञानी अनाथ का नाथ,
1: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ,
0: ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार,
1: ब्रह्म ज्ञानी अपरंकार,
0: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी,
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक
0: और धारै जो अंतर नाम, सर्व में देखै भगवान, निमक निमक
1: ठाकुर नमस्कार, नानक ओह अपरस सगल निस्तार। अष्टपदी
0: मिथ्या नाही रसना परस,
1: मन में प्रीत नरंजन दर्स,
0: कर्त्या रूप न देखै नेत्र,
1: साधक टहल संत संग हेत,
0: कर्णन सुनै काहू के निंदा,
1: सत्य जाने आपस को मंदा,
0: और प्रसाद विखिया पर हर है,
1: मन की वासना मन ते टरै,
0: इंद्रिय जत पंच दोख ते रहत,
1: नानक कोट मदे को ऐसा परस,
0: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न,
1: विष्ण की माया ते हुए भिन्न,
0: कर्म कर्त हो रहने कर्म,
1: इस वैष्णव का निर्मल धर्म,
0: काहू फल की इच्छा नहीं बांचै,
1: केवल भगत कीर्तन संग रचै,
0: मन तन अंतर सिमरन गोपाल,
1: सब ऊपर होवत कृपाल,
0: आप दृढ़ अबरह नाम जपावै,
1: नानको वैष्णव परम गत पावै,
0: भगवती भगवंत भगत का रंग,
1: सगल त्याग दुष्ट का संग,
0: मन ते बिनसै सगला भ्रम,
1: कर पूजै सगल पार ब्रह्म,
0: साध संग पापा मल खोवै,
1: इस भगवती की मत उत्तम होवै,
0: भगवंत की टहल करै नित नीत,
1: मन तन अर्पै विष्णु प्रीत,
0: हर के चरण हृदय बसावै,
1: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै,
0: सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है,
1: राम नाम आत्म सुध है,
0: राम नाम सार रस पीवे,
1: उस पंडित के उपदेश जग जीवै,
0: हर की कथा हृदय बसावे,
1: सो पंडित फिर जोन न आवे,
0: वेद पुराण सिमरत बूझै मूल,
1: सुख मै जाने अस्थूल,
0: जो वरना को दे उपदेश,
1: नानक उस पंडित को सदा देश,
0: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान,
1: जो वरना में जपे को नाम,
0: जो जो जपे तिसकी गत होए,
1: सा संग पावे जन कोए,
0: कर कृपा अंतर उतार है,
1: बस प्रेत मुक्त पात्र को उतार है,
0: सर्व रोग का औखद नाम,
1: कल्याण रूप मंगल गुण काम,
0: काहू जुगत कितै न पाइया धर्म,
1: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म,
0: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास,
1: जिसका नाम सत राम दास,
0: आत्म राम तिस नदरी आया,
1: दास संतन पाए तिन पाया,
0: सदा निकट निकट हर जान,
1: सो दास दरगाह परवान,
0: अपने दास को आप कृपा करै,
1: जिस दास को सब सोची पर,
0: सगल संग आत्म उदास,
1: ऐसी जुगत नानक राम दास,
0: सब की आज्ञा आत्म हितावै,
1: जीवन मुक्त सो कहावै,
0: ऐसा हरख तैसा उस सोग,
1: सदा अनंत नहीं वियोग,
0: तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी,
1: ऐसा अमृत तैसी बिखाटी,
0: ऐसा मान तैसा अभिमान,
1: ऐसा रंग तैसा राजान,
0: जो बरताए साई जुगत,
1: नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त,
0: पार ब्रह्म के सगले ठाऊ,
1: जित जित घर रखे तैसा तिन नाम,
0: आपे करन करावन जोग,
1: भावे सोई पन होग,
0: असरे आप होए अंत तरंग,
1: लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग,
0: जैसी मत दे तैसा प्रकाश,
1: पार ब्रह्म करता अविनाश,
0: सदा सदा सदा दयाल,
1: सिमर सिमर नानक पहे निहाल। श्लोक
0: उस्त करे अनेक जन, अंत न पारावार,
1: नानक रचना प्रभ रची, बहुविधानक प्रकार। अष्टपदी
0: कई कोट होए पुजारी,
1: कई कोट आचार व्यवहारी,
0: कई कोट पै तीर्थ वासी,
1: कई कोट बन प्रमे उदासी,
0: कई कोट वीर के स्रोते,
1: कई कोट तपीसर होते,
0: कई कोट आत्म ध्यान धारे,
1: कई कोट कब काव विचारे,
0: कई कोट नवतन नाम त्यावहे,
1: नानक करते का अंत न पावे,
0: कई कोट पै अभिमानी,
1: कई कोट अंध अज्ञानी,
0: कई कोट कृपन कठोर,
1: कई कोट अभिग आत्म ने कोर,
0: कई कोट पर दर्भ को हिरहे,
1: कई कोट पर दुख न करें,
0: कई कोट माया श्रम माहे,
1: कई कोट पर देश परमा है,
0: जित जित लाभ होते तित लगना,
1: नानक करते की जाने करता रचना,
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी,
1: कई कोट राजे रस भोगी,
0: कई कोट पंखी सर्प उपाए,
1: कई कोट पात्र बृख न बजाए,
0: कई कोट पवन पानी बैसंतर,
1: कई कोट देश भूमंडल,
0: कई कोट ससिया सूर नखत्र,
1: कई कोट देव दानव इंद्र शिरशत्र,
0: सगल समग्री अपने सूत धारै,
1: नानक जिस जिस भावे तिस तिस निस्तार है,
0: कई कोट राजस्थान सातक,
1: कई कोट वेद प्राण समृति शास्त्र,
0: कई कोट की रतन सुमुंद,
1: कई कोट नाना प्रकार जंत,
0: कई कोट की ये चिर दीवे,
1: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे,
0: कई कोट जख के निर्पिशाच,
1: कई कोट भूत प्रेत सुकर मृकाच,
0: सब ते नेरा सब हूं ते दूर,
1: नानक आप लिपत रे प्रभुर,
0: कई कोट पाताल के वासी,
1: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी,
0: कई कोट जन्म है जीव है मर है,
1: कई कोट बहु जोनी फिरे,
0: कई कोट बैठ सही खाहे,
1: कई कोट काल थक पाहे,
0: कई कोट की ये धनवंत,
1: कई कोट मा चिंत,
0: जय जय भाणा तह तह राखी,
1: नानक सब किस प्रभ के हाथे,
0: कई कोट भय बैरागी,
1: राम नाम सख तिन लिव लागी,
0: कई कोट प्रभ को खोजंते,
1: आत्म मह पार ब्रह्म लहंते,
0: कई कोट दर्शन प्रत्यास,
1: जिनको मिलियो प्रभ विनाश,
0: कई कोट मांगे है सत्संग,
1: पार ब्रह्म तिन लागा रंग,
0: जिनको होए आप सो प्रसन्न,
1: नानक तेजन सदा तन तन,
0: कई कोट खानी अर खंड,
1: कई कोट आकाश ब्रह्मांड,
0: कई कोट होए अवतार,
1: कई जग की नो विस्तार,
0: कई बार बसरे उपासार,
1: सदा सदा एक एक अंकार,
0: कई कोट कीने बो भांत,
1: प्राप्त होए प्रभ माहे समात,
0: ताका अंत न जाने कोई,
1: आपे आप नानक प्रभ सोए,
0: कई कोट पार ब्रह्म के दास,
1: जिन हो वते आत्म प्रगास,
0: कई कोट तत् के बेते,
1: सदा नहारे एको नित्रे,
0: कई कोट नाम रस पीव है,
1: अमर पहे सर सर ही।

चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र भरती चत्र चक्र भरती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र माने चत्र चक्र दाने चाचरी छंद न सत्रह न मित्रह न परमंग न पितरह न कर्मंग न काय अजन्म अजाय न चित्रह न मित्र परे है पवित्र पर थी स अदिश अदृश अक्र स भगवती छंत प्रसाद कथते क्या छे जो देश क्या भिज भेस क्या गंज करम क्या भंज भरम क्या भिज लोक क्या दित सो क्या वधूत वर्ण क्या विभूत करण के राजं प्रभा है के धर्मंग तुझा है के शोक भरण के सर्वा भरण के जगतं कृति है के छत्रंग क्षत्रिय है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनपो अनूप है के आद आदेव है के आप अपेव है के चित्रंग बहीन है के

के राजकारी है के कर्मकारी है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र दान है के सर्वत्र गौन है के सर्वत्र पहुन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राजा के सर्वत्र साजा के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज के सर्वत्र राज के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेश के सर्वत्र मान सदैव प्रदान के सर्वत्र जाप है के सर्वत्र ताप है के सर्वत्र पहन के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के

स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, भर भूत प्रभा है, सुजुक्त सुदा है, सदैवं स्वरूप है, अभेद्य अनूप है, समस्तो पराज है, सदा सर्वसाज है, समस्तो सलाम है, सदैव अकाम है, निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, अंगाध रूप है, अनाद स्वरूप है, अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गं त्रिबाधे अगंज अगाध सुभंग सर्वभागे शुभंग सर्वभागे सो सर्वानुराग त्रिभुत स्वरूप है, अच्छेज अछूत है, कनरकं प्रणास है, पृथ्वी अल्प

नित सो नित अजात है आजाद है। चरपट छंत है प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ख्याता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं योक्ता सर्वं मुक्ता रसावल छन्त्वा प्रसाद। नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं बेपूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध बेपूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे।

नमस्तल परनामे समस्तल परनासे अगंजुल अनामे समस्तल निवासे निरकामंग विभूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग परनासी सो धर्मंग विभूते।

ही मैं चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं पवसभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदायांग संगे अपंगं विभूते।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी
2: सच्चे ब्रह्म

आपे ही करना की ओकाल आपे ही ते तारी है, देखा किता अपना दर कच्ची पक्की सारी है, जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है, जिसके जीव प्राण है के सहे मनो

महाराज नो कहंदे ने ओहंकार है उन्हां दे बोल ओहंकार आद कथने अनाद। जाप साहब ओहंकार अनादि कथनी है, पहला बोल है ओहंकार। ब्रह्मंड दी पहली आवाज है, पहला शब्द है। इस शब्द इसे तो ही संसार दा आवना होया, कीता पसाओ एको कवा, एक कवाओ होया ओहंकार। उस तो ही संसार दा पसारा होया, किस तरह होया, किसते होए लख दरिया। उसे कवाओ तो जिंदगी दे लखा दरिया पैदा हो गए, बहु अनंत सूरज पैदा हो गए, जो लखे नहीं जा सकते, गिने नहीं जा सकते। एक एक सूरज दे फिर कई कई टुकड़े बने, कई कोट ससियर सूर निखत्र कई करोड़ा। एक एक सूरज दे फिर कई कई टुकड़े आए, ये जमीन उसे सूरज का एक टुकड़ा। धुंध पानी बन गई और वो टुकड़ा जो वास्तविक अग का गोला से, अग का गोला ही से, सहजे सहजे ठंडा होने लग पाया। धुंध पानी बनी, इस अग दे गोले नो चारों पासे पानी ने घेरिया। सहजे सहजे ए अग दा गोला ठंडा होना शुरू होया। ए जिस रूप दे प्रगट होया इनू कहंदे ने पाहन। पाहन पानी तो प्रगट होया। साचे ते पवना भया पवने ते जल होए, पवन शब्द। साचे ते पवना भया पवने ते जल होए, जलते त्रिभुवन साजिया घटगढ़ ज्योत समोए। पंज तत्तां दी पुतला है साड़ा, हर तत् दी अपनी अपनी प्रकृति है। ये जिहड़ा बोलना है ना ये पवन करके, देही माटी बोले पवन। हुण किवें बोलदा है लंबा चौड़ा प्रकरण, मैं इस पासे ना जावा क्योंकि समा अपनी चाल नाल चलदा पिया। इस वास्ते सतगुरु ने पवन नूं गुरु कह दिता है ना, पंज तत्तां दे चों पवन नूं गुरु कह दिता है। पवन गुरु क्यों? बोलना पवन करके है। संबंध जुड़दे ने बोल चाल नाल, संबंध टुटदे ने बोल चाल नाल। टुट गई प्रीत बुर बोल, दो बोल बोले मित्रता दुश्मनी च बदल गए। गंड परीति मिठे बोल, दो मिठे बोल बोले ओपरा बंदा अपना हो गया, मित्र बन गए। संबंध जुड़दे ने बोल चाल नाल। एक सियाणा मेहमान एको ही दिन दे अंदाजा ला लैंदा है दो बिरावां दे संबंध ठीक नहीं ने, क्यों? बोलदे ही ने, बोलदे ही ने। एक सियाणा मेहमान एको ही दिन दे अंदाजा ला लैंदा है पति पत्नी दे संबंध बिगड़े हुए ने, क्यों? बोलदे ही ने। ते जे बोलदे ने ते कुरख्त बोलदे ने, वह बोल बोलदे ने जिहदे नाल प्रीत टुटदी है, फौरन अंदाजा लग जांदा है। संसार नाल संबंध जुड़दे ने बोल के, निरंकार नाल भी संबंध जुड़दे ने बोल के। मोह के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यास, बोल के ही संबंध जुड़नगे। पर एक फर्क है, संसार दे च असी देखदे पहले आ मनुख नूं, बोलदे बाद च। निरंकार दी दुनिया च ए नहीं, बोलना पहले पएगा दिखाई बाद दे च देगा। उम्मीद ए गल पकड़ दे चाहिए। वाहिगुरु वाहिगुरु जपना ते पहले पएगा, गुरु दी बाणी जपनी ते पहले पएगी, दिखाई बाद दे देगा। क्यों? जैसे कई पशु पंछी जमदे आ उन्हां दी अखां बंद होंदियां ने, सहजे सहजे बाद च खुलदियां ने। जन्म तो साडे शरीर दी अखां ते खुलियां होंदियां ने, मन दी अखां पूरियां नहीं खुलियां होंदियां। ये भी महस कर दिया। मन दा सिर्फ एको ही भाग जागया, नौ भाग सुते हुए ने। थोड़ी जिहा अख खुली है तो थोड़ी जिहा चीजां दी समझ है, बाकी नहीं। थोड़ी जिहा चीजां दी असलियत दिखाई देंदी है, बाकी नहीं। वो जो वाहिगुरु वाहिगुरु जपना है, वो जो बाणी जपनी है, ये वाहिगुरु नूं सुनाण वास्ते नहीं, अपने आप नूं जगाण वास्ते। सिमर सिमर गुरु सतगुर अपना।

0: पर जो वर्तमान दिस टिक गए भगत है, भगवान दा रूप है, उते ईश्वर दा रूप है। वर्तमान दिस टिकदे आं होवन हार सोई परवाना, जो हो गया है ते होना ही सी, होना ही है, अनहोनी नहीं है, अनहोनी नहीं है। ठीक है, जवान जैसे बुढ़ा होने लगता है एकदम ख्याल आंदा है अनहोनी होगी, अनहोनी होगी। यही कारण है कि सारे जग दसते हैं, अगर 60 साल है 50 दसते हैं, 50 है 40 दसते हैं, 40 है 30 दसते हैं। और अक्सर स्त्रियां 30 तो अगे जांदियां ही नहीं, उत्थे ही रुक जांदियां, उत्थे ही रुक जांदियां। कारण बुढ़ेपा अनहोनी है। कौन दसे बुढ़ेपा ते होना है? अनहोनी नहीं है। मौत ते होनी है, अनहोनी नहीं। भगत कबीर कहंदे ने, पाड़ो सीखे जो हुआ तू अपने थी जान, समझ ले मेरी अर्थी उठी। कंधियां ते नहीं चुकया, शायद पड़ोसी ने अपने कंधियां ते मैनू चुकया है। इस तरह समझ, तू अपने भी जान, ऐसा ओही जान सकदा है जो वर्तमान दिच आ गया है। तो वर्तमान दिच टिकदियां होवन हार सोई परवाना, जन्म हो गया है कबूल, जीवन कोल है कबूल, मरण सानू कबूल। लेकिन मरदे दम तक मनुख नु सिर्फ जन्म कबूल है, मरण कबूल नहीं। इस वास्ते मरदे दम तक जन्म दिन मनांदा है, मरण दिन नु भुलाने दी कोशिश करदा है। और यही कारण है कि परम आनंद दी प्राप्ति तो वांझा रह जांदा है, रोग दिच जीवदा है, सोग दिच जीवदा है। जबकि वर्तमान दिच जीण वाला रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकानी। धर्म दी ए महान साधना सारी दुनिया दी, धन गुरु नानक देव जी महाराज करांदे रहे, दसते रहे और लोगां नू रोग ते सोग तों कढ़दे रहे। इस वास्ते जेड़े जेड़े साधना करके वर्तमान दिच जीवे ते भगवान नू जिंदगी च प्रगट कीता, उन्हां सारियां दी जबान तों एक बोल निकलिया, बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: Radio station 1550 AM Gurbani segment tuhade tak. Swargwasi Sardar Ajit Singh di baad, Swargwasi Mata Surinder Kaur baad di yaad de vich 1550 AM to Gurbani prachar kita janda hai. 1550 radio de utte Gurbani de kise bhi program nu sponsor karn vaste 604-961-7790 604-961-7790 1550 AM. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh.
3: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, 2990152 ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ, 21 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 26 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਾਲ ਗੰਡੇ 25 ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੈਗ 1698 ਦਾ, ਪੀਲੇ ਗੰਡੇ 50 ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੈਗ 1698 ਦਾ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ, ਰੈਡ ਜਾਂ ਓਰੇਂਜ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਲਵੋ 98 ਸੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ।

कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद हमें रोग मानक को दीना काम रोग मैं गलवस कीना दृष्ट रोग पचमुए पतंगा नाद रोग खप गए कुरंगा जो जो दिशे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी।

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कोमो की पेशेंस का टेस्ट

परम सन्मान योग हजूर दे अमृत बचना दा आनंद मान रहे गुरु सवारे सतसंगी जनों आप जी ने पट कीरत साहब जी की रचना तो उच्चारण किया होया गुरु रामदास कृपालू जी की सिफत विच जो सवैया है इस दा पाठ सरवण किया है। अज दे इस सवैये दा संखेप भाव इस प्रकार है कि आद गुरु धन गुरु नानक साहब जी ने उस निरंजन परमात्मा वाहगुरु जी दे नाम नू जानिया और उन्होंने लिब ला के अपने अंदर दी बिरती पूर्ण तौर ते टिका उस परमात्मा दी प्रेमा भक्ति कीती। गुरु नानक साहब जी दी कीती हुई प्रेमा भक्ति दा सदका हजूर दे अंग संग रहन वाले धन गुरु अंगद साहब जी एक समुंदर वत विशाल हो गए ते गुरु अंगद साहब जी ने आए हुए जग्यासुआ उते शब्द सुरत दे अभ्यास दी बरखा कर दिती। गुरु अमरदास उन्हां बारे भट्ट जी कह रहे ने उन्हां दी कथा ही अकत है। साडी एक जबान साडी एक रचना गुरु अमरदास जी दी कथा नू पूर्ण तौर ते बयान नहीं कर सकदी। कहिंदे ने इन्हां तीन पातशाहियां दी कृपा दा सदका हुण धन गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान गुरु नानक साहब जी दे भगती दे खजाने दे मालक बने ते इस जगत जलंदे नूं परमात्मा दे नाम दियां दातां मंडण वास्ते गुरु रामदास हुण कृपा पै कर दे। आओ इस अमृत बचन दी विचार धन गुरु रामदास जी दे चरणा विच अरदास करिए कि आप कृपा करके विच वर्तन प्रेम भावना श्रद्धा और अकीदत दी दात बख्श के इस मलीन ते खिंडे हुए मन नूं पूर्ण तौर ते टिका बख्श आप ही विचार करा लैन। साध संगत बख्शो आशीष और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो कृपालता फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। पट कीर्त साहब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आद गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा नानक नाम निरंजन जानियो धन गुरु नानक साहब कृपालू जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया किन्नी भगत प्रेम लिबलाई उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती धन गुरु नानक साहब जी ने एक मन खो के लिब ला के
अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहिगुरु जी की भगती की। आरंभता है प्रेमा भगती तो। धन गुरु नानक साहब जी ने हठ की गल नहीं की। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। धन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती लई सानू प्रेरिया है। जिवें असी बाणी विचों धन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन कहा। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने यह बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका सिर जुला जे मूह पिरी मिलन, के अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हथ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने इनू इस तरह बाला के जिमें तंदूर दे विच लकड़ां बल दियां ने। तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका जे पैरां नाल चलदियां होयां थक जावां, सिर जुला मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवां, जे मूह पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली, बाहर दी पटकना तो बचा, सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा ना, इना खडियां नू बालन बना के तंदूर विच फूक ना। तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निखार। देख तू इना सिर ने इना पैरां ने तन दे अंगा ने की विगाड़िया, तू अपने अंतर आत्मे उस प्यारे वाहिगुरु जी दी प्रेमा भगती करके ओनू तक लै। हुण इत्थे एक शब्द मैं अर्ज करनी चाहना कि इह शब्द आया प्रेमा भगती, जां इउं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई, कि प्रेम नाल लिव ला के रब दी भगती कीती। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी हुई शक्ति है जिहड़ी हर एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है की असी आम तौर ते शब्द भी वरतने हां कि प्यार ही परमात्मा है। गुरु कलगीधर जी दे बचन पढ़ने हां, साच कहो सुन लेखो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम दरअसल की है? कोई मनुख ऐसा नहीं जिदे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति प्रेम वाली एनर्जी प्रेम वाली ऊर्जा प्रेम वाली ताकत नहीं टिकाई। केवल मनुख नहीं, हर जीव दे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति ए अंश ए ऊर्जा टिका दिती है। केवल जीव ही नहीं, इत्थों तक कि जमीन दे विच पैदा होई फसल, जमीन दे विच पैदा होए पौधे, जमीन दे उत्ते पैदा होए रुख, परमात्मा ने उन्हां दे अंदर भी इस शक्ति नू टिका दिता है। प्रेम एक अंदर दी खिच है, प्रेम एक परमात्मा दी दित्ती हुई ओ दात है जिहड़ी वख वख जीवां विच परमात्मा ने वख वख तरीकियां नाल टिका दित्ती है। जिवें उदाहरण कई वारी अर्ज करना हुन्ना, हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता है, कहन लगे सरवर कमल किरण आगासी बिगसै सहज सुबाही। हुण कमल दा फुल जिहड़ा ओ सरोवर विच है ते किरण सूरज जिहड़ा ओ आसमान विच है, दोनां दा करोड़ां माइल्स दा करोड़ां कोह दा इन्हां दा फासला है। इन्हां करोड़ां मीलां दी दूरी होण दे बावजूद कमल विच परमात्मा ने एक इहो जी शक्ति टिका दित्ती, ऊर्जा टिका दित्ती, जिहड़ा सूरज नूं अपने तो करोड़ां कोह दी दूरी होण दे बावजूद भी
ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਕਨਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੁਛ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਤਾਕਤ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਊਰਜਾ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਚਕੋਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਕੋਰ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਟਿਕਾਈ। ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਟਿੱਕ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਕੋਰ ਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਕੋਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਆਉਂਦਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਟਿੱਕ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਏ। ਚੰਦਰਮਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਮਾ ਗਤੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰੁੱਖ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਚਕੋਰ ਜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੰਦਰਮਾ ਆਇਆ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਚਕੋਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਥਿਰ ਰੱਖੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋੜੀ ਜਾਏ। ਗਰਦਨ ਮੋੜਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ, ਇੰਨਾ ਟਿਕਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਝੁਕਣਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਚਕੋਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਕੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝੇ ਉਸੇ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਨੇਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਚਕੋਰ ਦੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟਿੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਲਾਏ ਤਾਰ ਨਿਖਾਲੇ, ਤਾਰ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲਿਵ ਲਾਣੀ, ਇੱਕ ਟਿੱਕ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਟਿੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਲਾਏ ਤਾਰ ਨਿਖਾਲੇ, ਚੱਕਵੀ ਸੂਰਜ ਖੇਤ ਹੈ, ਮਿਲ ਖੂਨ ਸੁਖਾਲੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਖੇਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਵੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਨੇਕ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਉਹਦਾ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਚੱਕਵੀ ਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੱਕਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਕਵੀ ਤੇ ਚੱਕਵਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚੱਕਵੀ ਤੇ ਚੱਕਵੇ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੀ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਿਖਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦੇਖ ਉਸ ਚੱਕਵੀ ਤੇ ਚੱਕਵੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ,
एक रात दा विछोड़ा पिया ते सारी रात एक दूजे नू पुकार दे रहे, उन्नी देर तक चैन नहीं सकून नहीं जिन्नी देर तक चकवी ते चकवा दोनों आपस विच मिल नहीं जाते। हुण ओह केड़ी खिच है जेड़ी सारी रात कुरलांदे रहे पुकारदे रहे। सिर मैं अर्ज करनी चाहना कि गुरु नानक साहब ने प्रेमा भगती की एक टेक होके ते अर्ज कर रहे हैं कि प्रेम दी दात परमात्मा ने एक खिच हर एक दे विच पैदा की है। कमल विच खिच है सूरज नू देख के, चकवी ते चकवे अंदर खिच है, चंद्रमा ते चकोर दी खिच है। भाई साहब ने दूसरा बचन कहा, पहला सी चंद चकोर प्रीत है लाए त्यार तार निखाले, चकवी सूरज खेत है मिल होन सुखाले, निहो कवल जल जानिए खेड़ मूह बखाले। हुण पानी ते कमल दा फुल आपसी कैसा प्यार पै कर दे कि सुकी मिट्टी दे उते कमल दे फुल कदी प्रफुल्लत हुंदे देखे ने। जमीन ता ओही है, छप्पड़ टोबा ता ओही है, पर कमल दे फुल ना सुके कदी टोबे विच ना सुकी जमीन ते प्रफुल्लत होणगे। पानी रुकण दी देर है ते सौण दे महीने विच कमल दे फुल अपने आप नूं प्रफुल्लत करदे ने ते पानी दे विच ओह पूर्ण तौर ते खिड़ जांदे। अगे मैं अर्ज करनी है, कमल दे फुल दी खिच सूरज नाल भी है, कमल दे फुल नूं जिंदगी पानी भी दे रहा है, पर जेड़ी दिसदी नहीं ओह खिच पानी विचों उहनूं मिल रही है। भाई साहब ने चौथा बचन किया, कहन लगे, मोर बबीए बोल दे वेख बदल काले। हुण काला बदल असमान ते चढ़ के आउंदा है, जितना मोर उहनूं देख के खुश हुंदा है, हुण बदल दा ते मोर दा आपसी की रिश्ता है। ओह असमान दे उत्ते ओह धरती दे उत्ते जदों काली घटा चढ़ी ते मोर इको दम पहला पान लग पिया ते अपने पंखों ने पूर्ण तौर ते खलार लै बखेर लै। उस बदल नूं देख के मोर दे अंदर भी परमात्मा ने एक खिच पैदा कर दिती, जेड़ी बदल नूं देख के खड़ाओ विच आया ते नचन लग पिया। पपीए वल झाती मारीए, सच जाण्यो बाकी साल दे महीने पपीआ कदी भी उच्ची नहीं पुकारदा, पर जदो खाड़ ते सौण दा महीना हुंदा है भादों दा उदो पपीए दे गले विच वी राग पैदा हो जांदा है, ओह भी बदलां नूं देख के उच्ची उच्ची पुकार लग पिया है। उहदे विच वी इक खिच है, चकोर विच, कमल फुल विच, चकवी विच, मोर ते बबीए विच, ते सच जाणो मां ते पुत्तर दी भी इक खिच है। इस्त्री दी पति ते पत्नी दे अंदर भी इक दूजे प्रति खिच है। पर भाई साहब ने सारियां गल्लां करके कहन लगे, चंद्रमा दी चकोर नाल प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, पर सच जानी चंद्रमा बेवफाई कर सकदा है। प्यारिया के पानी जेड़ा वो सुख सकदा है, कमल फुल मुरझा सकदा है, चकवी ते चकवे दा विछोड़ा पै सकदा है, चमक दे कोई बदल दूर जा सकदे ने, मोर ते बबीए विलकदे रह सकदे ने, मां ते बाप साथ छड के जा सकदे ने, नार ते पतार दा प्यार है पर मौत प्यार नू विछोड़ सकदी है, पर गुरु ते रब दी प्रीत ऐसी है जिस खिरदे विच टिक जाए सच जानो ए प्रीत मरन तो बाद भी कदी नहीं टुटदी। ए कैसी प्रीत है? भाई साहब ने प्यार दी व्याख्या करदिया बहुत सोहनी पौड़ी कही, चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, चकवी सूरज खेत है मिल खोन सुखाले, न्यो कवल जन जानिए खिड़ मूह बखाले, मोर बाबीए बोल दे वेख बदल काले, नार पतार प्यार है मां पुत संभाले। पर प्यारिया गुरु नानक दी प्रीत कैसी है? पीर मरीदा पिर घड़ी ओ निभ है नाले, के मरीद दी ते पीर दी जेड़ी प्रीत है ओ तोड़ निभण वाली, ओ रस्ते विच टुटण वाली नहीं। आप तवज्जो देना, गुरु नानक साहब ने उस करतार दी प्रेमा भगती की थी। ते जदो असी बाबे नानक जी दी बाणी पढ़ने हैं ते उन्हां ने अपनी अमृत बाणी विच अपने मन नूं मुखातब करके प्यारे नूं प्यार करन दे कुछ जुगतां सानूं दसियां। हजूर दी श्री राग विच एक अष्टपदी है, उस अष्टपदी दे कुछ पदे मैं आप जी दे समक्ष रखने चाहना हां कि सतगुरु गुरु नानक साहब दी प्रेमा भगती कैसी है। उस अष्टपदी दियां रहाओ दियां तुकां ने, रहाओ दे बचन ने,
मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, हे मेरे मना की परमात्मा नु प्रेम तो करन तो बिना तेरा खेड़ा छुट सकदा, की तू बंधना तो मुक्त हो सकना परमात्मा नु प्रेम करन तो बिना। मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, गुरमुख अंतर रव रहा हर बख्शे भगत भंडार। गुरु दे राही ये समझ पैंदी है कि परमात्मा सारिया थावां ते रव्या है, ते गुरु कृपा करे ते भगती दे भंडारे बख्शदा है। रहाओ दी तुक नू फिर समझिए, मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, प्यार तो बिना प्रेम तो बिना उस परमात्मा नू कदी तू खुश नहीं कर सकदा। गुरु तो बिना तेनू प्रेम करन दी जुगत नहीं आउंदी। वैसे तां जे इंसान नू समझ पै जाए कि प्रेम प्रीत प्यार ने ये जितने भी शब्द असीं वरतने आ, जे इंसान दे शरीर अंदर तन अंदर परमात्मा दी प्रीत नहीं प्यार नहीं, ते गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने प्राण प्यार तो प्रीत तो बिना जिहड़े मनुखां दे तन ने कहिंदे ने मानो उह तां इस तरह ने जिवें शमशान भूमि विच मुरदे सड़ के किते मिट्टी दा ढेर हो जा। उह तां इस तरह ने कि जिवें मानो कि एक मरिया होया शरीर प्यार है, मरे हुए शरीर विच कोई हरकत नहीं, ते जिस मनुख दे जिस्म अंदर परमात्मा दा प्यार नहीं, सच जाने ओ खाए भी पीए भी बोले भी, पर गुरु दी नजर विच एक ओ जिंदा लाश है, ओ मुर्दा है। जे उस अंदर प्रीत नहीं तां प्यार तो बिना छुट नहीं सकदा। हजूर दे बचन सी पढ़ने हैं, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, ये सारे गुण होण दे बावजूद भी मृतक कहीं नानका जे प्रीत नहीं। भगवंत बाबा नानक जी कह रहे ने, मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, मृतक कहीं नानका जे प्रीत नहीं। भगवंत जे उस परमात्मा ली प्यार नहीं ते सच जानी ओ शरीर मुर्दे दे समान है, उस शरीर दा कोई अर्थ नहीं। ओ मुर्दे नू जितना मर्जी कोई शिंगारी जाए ते उस दा अर्थ की है, कुछ भी नहीं। हजूर ने कहा प्रीत तो बिना, बाबा फरीद साहब दे बचन सी पढ़ने, उन्होंने जोबन की गल की, हुण जवानी